0: जब भी वो मार्वल यूनिवर्स का जो ट्रेंड था ना, वो जो फेज था ना मार्वल यूनिवर्स का, आयरन मैन एंड दिस एंड दैट, वो सभी हल्क वल्क सब कुछ, तो हम लोग मार्वल मूवीज रेगुलरली देखते थे. मतलब मार्वल मूवी है देखने का ही देखने का. ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी मूवी नहीं देखते थे. हम दूसरी मूवीज भी देखते थे. हम अच्छी मूवीज देख,
1: भाई की मूवी को छोड़कर तुम सब देखते
0: हो. अरे भाई की मूवी भी देखी हम लोग ने.
1: ओ
0: हाँ, क्योंकि तभी, हाँ क्योंकि तभी कुछ और था नहीं.
1: अच्छा.
0: और हम लोग शिफ्ट हो गए थे. अरे मैं चला गया था बदलापुर, वो आ गया था अंबरनाथ. एंड वी वर लाइक यार इधर कुछ है भी कि नहीं है कि हम लोग खाली मतलब जाके नदी में बैठने गए. तो तभी टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई थी.
1: टाइगर जिंदा ये कौन सी मूवी है?
0: भाई की मूवी है. नहीं नहीं, हाँ टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई.
1: एक तो टाइगर तो आई नो.
0: हाँ तो टाइगर जिंदा है, उसका सीक्वल है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि टाइगर में दिस वाज अ क्लिफहैंगर कि टाइगर टपक गया.
1: टाइगर मर जाता है.
0: हाँ बट दैट वाज अ क्लिफहैंगर.
1: ओके.
0: तो उसका क्लिफहैंगर, तो उसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा है.
1: जिंदा है, जिंदा है,
0: जिंदा. एनीहो, सो दैट was the time when we would wait. और तभी ऐसा regular Marvel movies आती थी. So this was kind of a highlight for us.
1: अच्छा.
0: तो मेरे को सपना आया कि Marvel का कोई नया picture निकला है.
1: अरे वाह.
0: और मैं और मदन हम लोग जा रहे हैं अभी picture देखने को. और मैं खड़ा हूँ मेरे घर पे इधर न्यूजीलैंड.
1: अच्छा.
0: और मैं मस्त में बाहर देख रहा हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे क्या मस्त कलर है आज. क्या मस्त कलर दिख रहा है आसमान में. और मैरी बोल रहा है तू टाइम पे निकलने वाला है कि तू खाली आसमान देखता रहेगा. बोला हाँ निकलता निकलता. एंड देन बस खत्म, वो सपना खत्म हो गया था.
1: ओके. सो बेसिकली सपने में तो मूवी देखने जा रहा था, बट न्यूजीलैंड के स्काई के कलर्स ने तुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया कि तू मूवी लेट हो गया मूवी के लिए.
0: नहीं
1: मतलब होते होते रह गए.
0: मैं हूं, वो उधर है
1: और तुम दोनों मूवी देख रहे हो. हां ऐसा होता है ना,
0: जाने वाले अभी
1: ऐसा होता
0: थिएटर में.
1: एनीवे यू प्ले अ गेम, प्ले अ सॉन्ग एंड देन आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग.
0: अच्छा.
1: ऑन दिस.
0: अच्छा कौन सा गाना बजाओ?
1: कोई गजल बजा दीजिए.
0: जाएगा नहीं ये.
1: What?
0: किसके साथ जाएगा नहीं?
1: किसके साथ नहीं जाएगा? तेरी पर्सनालिटी के साथ.
0: एक मिनट. क्या?
1: किसके साथ नहीं जाएगा गजल?
0: अभी जो गाने बज रहे हैं ना उसके साथ गजल बैठेगा नहीं बीच में.
1: अरे तो कोई थीम थोड़ी ना है.
0: ओके सो अनदर पंजाबी सॉन्ग. ये गाना मेरे को एक्चुअली पसंद है.
1: अच्छा.
0: अगेन गाने का टाइटल है हे लव.
1: अब देखते हैं उसमें क्या है.
0: ठीक है. सूखे का गाना.
1: ओके.
0: हे लव.
1: चलो ठीक है. सूखा सूखा ही लव.

0: सो इस गाने में मुझे हे लव समझ नहीं आया.
1: ओके.
0: मतलब कि जो भी गाने के लिरिक्स थे उसमें ऐसा हे लव जैसा कुछ समझ नहीं आया मुझे.
1: हे लव मतलब
0: हे लव. हाँ मुझे समझ में आया, मतलब इंग्लिश
1: बुला रहा है उसको शायद.
0: हाँ लेकिन उस गाने में नहीं बुला रहा. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
1: अच्छा.
0: सो प्रोबेबली नॉट ऑल सॉन्ग्स आर टाइटल्ड वेरी वेल.
1: ये नहीं मालूम. वैसे आई हैव अ थ्योरी.
0: या
1: आई हैव अ थ्योरी बिहाइंड दिस कि द रीजन व्हाई ये ट्रेंड है कि गाना पंजाबी है लेकिन टाइटल इंग्लिश है. इसका रीजन ये है कि ये जितने भी गाने हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीरोइन है वो भारतीय नारी तो नहीं लग रही. मतलब आई मीन दिस ना.
0: तो क्या हो गया?
1: तो मतलब ये हो गया कि उसको शायद से पंजाबी नहीं आती रहेगी ना.
0: अच्छा.
1: तो उसको समझाने के लिए कि गाना क्या है बस इंग्लिश टाइटल दे दिया कि गाने का द गाना है इज अबाउट लव या फिर गाना इज अबाउट आई फेल फॉर यू.
0: आई फेल फॉर यू फिर भी मतलब थोड़ा सा मीनिंग जा रहा था वहां. हाँ, पर इसका नहीं जा रहा. बट एनीवे लेट्स नॉट यू नो डिस्करेज देम.
1: नहीं नहीं आई एम
0: वो इंग्लिश में रखें हिब्रू में रखें हमें क्या जा रहा
1: है. कोई फर्क नहीं. मेरे को गाने पसंद है मैं सुनता हूं
0: बस.
1: सो ये गाना मेरे को पसंद है. एंड देन देयर इज आल्सो अनदर सॉन्ग बाय द सेम गाय अट्रैक्शन. वो भी पसंद है मेरे को.
0: अरे वाह. अब वो नेक्स्ट सॉन्ग क्या है?
1: नहीं वो नहीं बजेगा. वो शायद अगली बार बजाएगा मैं.
0: ओके. ब्रेक लेने का टाइम हो गया आई थिंक.
1: How is this happening? How are you keeping the time?
0: See, सीख रहे हैं हम समय के साथ.
1: अच्छा. Alright. ठीक है. One or two break.
0: Break.
2: Community notices on MPR.
3: Rural Bus Manawatu is a new service that collects people from addresses in outlying areas of the Manawatu and brings them to Fielding and the surrounds for shopping, appointments and the like, and then returns them home later in the day. It is a subsidised service with most reasonable rates. Ring 022-0242-500 to book or email info@ruralbusmanawatu.org.nz.
2: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at mpr.nz or call 06 357 9340.
4: Hey Cam, does the thought of writing your novel make you want to summon the dark rage of your ancestors in a blood ritual, all the while demanding worship in order to fuel the divinity of godhood?
5: Yes.
4: Luckily, you're not alone. We have a range of local experts here to talk about everything and anything art. Skeleton and Crew every Wednesday night at 9:30. Now here's a jingle.
6: Skeletons beware, skeleton art space.
7: The Weekly Hotwire. Bringing you the stories that matter. Farming is the backbone of New Zealand. Agriculture not only drives export revenue and provides jobs for hundreds of thousands of people, it touches all of our lives. Keep up with the latest on all things farming with the Weekly Hotwire Show.
3: Wednesdays at noon on NPR.
8: It's played on the world stage.
9: Mexican fans are the most incredible I have ever come across.
10: Singing from the first minute until the last.
8: Leading the conversation on the global game.
11: I'm a typical Brazilian football player. I played Ronaldo, Thierry, Ronaldinho, then Beckham.
10: That is why

0: That game is so amazing.
1: World football.
2: Now it is very much in your best interest to listen.
1: From the BBC.
3: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
4: All right.
5: We are back. तो और सुनाओ, ऑटम के अलावा क्या क्या हो रहा है?
4: ऑटम के अलावा, ऑटम के अलावा तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा.
5: इंडिया में ना आम आ गए हैं, बहुत अच्छे.
4: लगा ही था मेरे को कोई ना कोई किधर ना किधर तो आम का टॉपिक अभी निकलेगा ही निकलेगा. एज एन आई एम नॉट सेइंग इट विद यू.
5: I'm saying with anyone.
4: Yeah. ठीक है. मतलब जैसा इधर अपने इधर मई का टाइम आ जाता है ना तो सब लोग बोलते हैं यार आम आएंगे अभी, अभी आम आएंगे, अभी आम आएंगे.
5: लेकिन आते बहुत लेट है.
4: कभी भी आए. मतलब लोगों का अभी से ही चालू रहता है.
5: Of course, क्यों नहीं रहेगा यार? This is one of the most sought after fruits in the world.
4: ऐसा नहीं है.
5: Sort मुझे mangoes, okay, Indian mangoes.
4: Not all over the world. ऐसा नहीं.
5: No, not all over the world, as in. Okay, Indian mangoes are sought after in the world.
4: Sure. Okay.
5: तो इंडिया में क्योंकि बहुत वैसे तो अभी हर सीजन में आपको आम मिलता है, मतलब स्टोरेज का. पर जो टेस्ट है ना, और खासकर वो कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जो कुछ दिनों के लिए आती है, मतलब आपके पास मार्केट में वो 15 या 20 दिन के लिए होगी या एक महीने के लिए. छोटे छोटे आम आते हैं, इतने एक उंगली के साइज का आम आते हैं, वो छोटे, उंगली से थोड़े से बड़े होंगे शायद. वो मोटे मोटे होते हैं और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है. वो बारिश में आते हैं जब सीजन खत्म हो रहा होता है. बट यू नो वी यूज टू वेट फॉर दैट. तो हम हर चीज पहले हम वेट करते थे, अभी ये आएगा. एक आम होता है, उसका नाम होता है सफेदा. वो आएगा, वो थोड़ा सा हल्का हल्का व्हाइट होता है, बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला मैंगो. वो ठीक लगता है, नॉर्मल खा लेते हैं. फिर उसके बाद आता है दशहरी, जो मेरा फेवरेट है, विच इज वेरी स्वीट और टेस्टी होता है. उसको चूस के खाते हैं. फिर आते हैं चौसा, ग्रीन कलर का आम होता है वो, और वो भी खाते हैं बहुत ऐसे काट के. या फिर
4: लंगड़ा होता है,
5: एक लंगड़ा होता है,
4: एक तोता पाए,
5: एक तोता पाए होता है. और एक ये होता है भी छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो इतना आम होता है
4: वो नहीं पता.
5: तोता पाए इज लाइक, उसका शेप बहुत अलग सा होता है ना.
4: उसका जो शेंडी होता
5: है, शेंडी
4: वो तोते की चोंच की तरह लगता है.
5: हाँ हाँ.
4: इसके लिए उसको तोता
5: पाए. रत्नागिरी आता है, केसर आता है, कितने आम आते हैं. एक्चुअली इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगोस, मैंगो वैरायटी इन द वर्ल्ड.
4: ओके.
5: आई एम नॉट सरप्राइज्ड.
4: सी, इवन आई लाइक मैंगोस. इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट दैट, आई डोंट फॉन ओवर मैंगोस.
5: ओके.
4: कोई मेरे को खिलाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी. मतलब हाँ, मस्त लगता है खाने को, बहुत अच्छा लगता है मेरे को. बट ऐसा नहीं है, आई एम नॉट क्रेजी बिहाइंड इट. फैन फॉलोइंग नहीं है मेरा ऐसा. आम के लिए.
5: ओके. हाँ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला.
4: हाँ, नहीं मिला तो नहीं मिला. बिकॉज सी, आई डोंट इवन रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई हैड हापू सांबा.
5: व्हाट इज दैट?
4: अल्फांसो मैंगोस.
5: Alfonso. Okay.
4: Alfonso mangoes are called as hapus aam.
5: Oh my god. Alfonso is better.
4: अरे लेकिन मराठी में उसका हापूस बोलते हैं ना, तो मैं क्या करूँगा?
5: अच्छा, हापूस. हाँ. मैंने कहीं देखा है किसी जगह पे.
4: क्या?
5: हापूस आम.
4: हाँ, दुकान पे हिंदी मराठी में ही लिखा रहा था हापूस आम, हापूस आम्बा.
5: ओके. फिर
4: वैसे ऐसा पंजाबी में कुछ अदर, मतलब कुछ और वर्ड है क्या आम के लिए?
5: नहीं, आम ही बोलते हैं.
4: अच्छा, ओके.
5: और मराठी में?
4: मराठी में उसको आंबा बोलते हैं.
5: आंबा. तो हम कई बार उसे अम्मी ऐसे ना, छोटी होती है तो अम्मी बोलते हैं. बट ग्रीन वाले जो आम होते हैं ना, अचार वाले, जिसकी चटनी भी बनती है,
4: उसको कैरी बोलते हैं.
5: हम अम्बी बोलते हैं.
4: उसको कैरी बोलते हैं.
5: अच्छा, हम अम्बी बोलते हैं
4: मराठी में. उसको कैरी, सॉरी, हिंदी में उसको कैरी कहते हैं, मराठी में उसको कैरी कहते हैं.
5: करी.
4: कैरी.
5: ओके. नहीं, हम लोग उसको पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं, अम्बी.
4: ओके.
5: तो कहने का मतलब ये है कि आम जैसी चीज़. अब जैसे मैनी पीपल दे गो टू वियतनाम एंड दे जस्ट लव द कोको.

0: कोकोनट वाटर
1: इधर मिलता है बॉटल में?
0: नहीं मिलता है, पर वो फ्रेश पीने का मजा ही अलग है ना। तो ऐसे आप जहाँ जाते हो वहाँ का फ्रूट खाओ। तेरे को पता है मेरे को लीची खाए हुए कितने साल हो गए।
1: हाँ, इधर आई थिंक मैंने एक ही बार खाई है।
0: अच्छा खाई है?
1: हाँ, वैसे ही इंडियन स्टोर में मिली थी। अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से स्टोर से, इंडियन स्टोर से मिली थी। ज्यादा नहीं ली थी मैंने, थोड़ी सी ली थी और बस खा लिया। और फिर
0: फ्रोजन मिली थी?
1: नहीं, फ्रेश।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तभी इंपोर्ट की थी। एंड मैं जब इंडिया गया था तभी मैंने खा रही है। बस लीची का आइसक्रीम मेरे को पसंद है। ओके,
0: लीची का आइसक्रीम।
1: ओके, अब भी वही बोलने वाला था मैं। ऑकलैंड में ना एक जगह है, अभी मैं वो स्ट्रीट का नाम भी भूल गया। वो स्ट्रीट का नाम मैं एक दुकान से याद रखता हूँ।
0: अच्छा,
1: देयर इज दैट फ्रोजन आइसक्रीम प्लेस व्हाटएवर, वो रात तक खुली रहती है।
0: ओके,
1: इसीलिए मेरे को पता है वहां पे लीची आइसक्रीम मिलती है और वो बहुत अच्छी बनाता है।
0: मैंने मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लेवर सुने हैं जो मुझे
1: रोल आइसक्रीम।
0: अच्छा अच्छा, रोल, वो जो रोल करके
1: रोल करता है।
0: हाँ, अच्छा अच्छा, आई गेट इट, आई गेट इट। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बड़े अलग अलग फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए हैं।
1: किसमें?
0: आइसक्रीम्स में।
1: हाँ,
0: एक माचा, चलो माचा तो ठीक है, मतलब
1: हाँ, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द आइसक्रीम्स दीस डेज इज नॉट आइसक्रीम।
0: अच्छा, इट इज
1: फ्रोजन प्रोडक्ट।
0: ओके,
1: जैसे येच, ये जो रोलिंग आइसक्रीम जो है ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं है वो।
0: ठीक है,
1: इट इज फ्रूट पल्प, मे बी क्रीम या फिर दूध, एंड ऑल ऑफ दिस इज मैश्ड बट इट इज डन ऑन अ कोल्ड सर्फेस।
0: ओके, हाँ, ताकि वो बार बार जम जाए।
1: हाँ, तो वो जो रादर देन दैट बिकमिंग अ स्मूदी, दैट बिकम्स फ्रोजन पार्ट दैट फील्स लाइक एन आइसक्रीम। होता वो स्मूदी है लेकिन आइसक्रीम नहीं होता वो। इसीलिए यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स। For anything to become an ice cream, you have to whip it so that उसके अंदर air ये हो जाए, amalgamate हो जाए।
0: Okay.
1: इसके लिए घुमाते हैं उसको, उसको time लगता है।
0: Time लगता है।
1: हाँ, लेकिन ये जो बाकी चीज होती है, it's not ice cream। जैसे gelato, gelato is not gelato। इसलिए gelato में आपको बहुत सारे flavors मिलते हैं।
0: मैं कभी गई नहीं जिलेटो।
1: अरे जगह नहीं है कोई,
0: मतलब मैंने कभी खाया नहीं जिलेटो।
1: हाँ, तो इसीलिए देयर आर अदर फ्लेवर्स।
0: ओके,
1: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है।
0: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था, गुआवा आइसक्रीम।
1: ओके,
0: मुझे लगा, मैंने मंगवा तो ली, लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या नहीं। एंड एक और चीज थी, गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप। कोक होती है ना हमारी,
1: साउंड्स हॉरिबल
0: बट हमने खाई एंड इट वाज सरप्राइजिंगली टेस्टी।
1: टेल मी, ये दिल्ली में मिला था?
0: हाँ, तो
1: ओके, नहीं ठीक है, अच्छी बात है।
0: अरे टेस्टी थी,
1: आई एम श्योर, जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है।
0: दूध सोडा, हाँ, लोग पीते, लोग वो कोक सोडा पीते।
1: Which?
0: Okay, ठीक है, अभी
1: दूध कोक,
0: दूध कोक, वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हाँ, शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हाँ, अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
1: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
0: ओके, वाओ।
1: बैड न्यूज़ करेगी एक पिक्चर है।
0: बैड न्यूज़, ओके।
1: उसका गाना है जानम।
0: जानम। जानम देख लो।
1: नहीं, वो वीर जरा का गाना है, बहुत अच्छा गाना है।
0: नहीं, वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम।

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, it was very slow.
1: I like the singer.
0: Who's the singer?
1: बहुत trend में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: Okay.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लग रहा है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट, मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने.
1: अच्छा, आवर बिलवेड रणवीर कपूर.
0: ओह माय गॉड.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बल्टी पिक्चर आई थी.
0: बल्टी?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: एनिमल.
0: ओह या या, दैट वाज बल्टी. व्हाटएवर बल्टी इज.
1: सो एनिमल इज बल्टी.
0: सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाटएवर बल्टी इज, इट एक्चुअली साउंड्स कि इट इज एप्ट फॉर दैट मूवी.
1: उस पिक्चर में एक गाना, ठीक है, गाने का नाम है पहले भी मैं. रोमांटिक गाना है.
0: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: नाइस सॉन्ग.
0: अच्छा सॉन्ग है वो.
1: अच्छा गाना.
0: वो इन्होंने गाया?
1: या वो इन्होंने गाया.
0: अच्छा, विशाल
1: मिश्रा.
0: मिश्रा.
1: ओके. एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है,

0: बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. एंड आई केप्ट फीलिंग दैट ये गाना अर्जुन कनुंगो, देयर इज दिस आर्टिस्ट सिंगर है, वो आर्टिस्ट है, उसने गाया है.
1: अच्छा.
0: एंड आई केप्ट फीलिंग कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, गुड. मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है. ही इज एक्चुअली वो अंग्रेजी गाने बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
1: बेस ज्यादा है.
0: हाँ. तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है. बट नहीं, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो और इज ऑल्सो संग बाय विशाल मिश्रा. सो विशाल मिश्रा reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
1: Okay, matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai.
0: Nahi, aisa nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai. Wo
1: वो एक एक वर्ड को समझता है.
0: ये बोलोगे आप? हाँ.
1: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल.
0: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम कोई एक अच्छा सिंगर है, उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं, ठीक है. वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, बट for a period of say 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं. गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता.
1: Exactly.
0: And then suddenly वो फिर बंद हो जाता. And then some singer.
1: Singer.
0: And then suddenly
1: he takes a break ना.
0: नहीं. And then suddenly a new singer is in trend now. जैसे
1: I don't know.
0: अब जैसे जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर, ठीक है. उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर, ठीक है. अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था ठीक है. अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. अभी तक आया नहीं है वहां पे,
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद.
0: एंड इट्स इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री राइट. माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, his singing matures with his age.
1: I would say the same for an actor.
0: क्योंकि
1: artist हो ना आप.
0: Right.
1: तो आपको सीखना पड़ता है, आपको break लेना पड़ता है.
0: हाँ. अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब भी आया था तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है. And then towards the peak, मतलब absolute peak, the इमरान हाशमी phase. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, वेरी डिफरेंट. बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड. पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर राइट.
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, तो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं
0: राइट.
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द

0: मोशंस।
1: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे।
0: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट।
1: हाँ, ये नहीं पता एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है। और दोनों दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं। ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर आई थी लकी।
0: हाँ हाँ याद है मुझे।
1: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
0: लकी लिप्स गाना भी था उसमें।
1: हाँ, तो उसमें एक गाना है सुन जरा
0: सुन जरा।
1: ठीक है, वो दो दो दो सिंगर्स ने गाया है, एक सोनू निगम ने। ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना।
0: अच्छा,
1: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
0: भी गाया है।
1: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना।
0: ओके,
1: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
0: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे बहुत पुराना ट्रेंड है।
1: हाँ,
0: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है।
1: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे।
0: हाँ।
1: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे, और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे। Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
0: he should remain in the scene.
1: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is how, that is what my point is.
0: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं।
1: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan?
0: Tell me the last. अभी हाँ, actually Mohit Chauhan, हाँ सही बोल।
1: Tell me where is Sonu Nigam?
0: Sonu Nigam, oh he has disappeared. That's correct.
1: वही तो मैं कह रहा हूँ। तो it is not the singers.
0: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था।
1: अभी भी अच्छा है।
0: हाँ,
1: अभी भी काफी अच्छा है।
0: हाँ,
1: अभी भी he is very talented.
0: तो
1: ऐसा नहीं बोल सकते अपन।
0: तो फिर आप हमें
1: that's my call.
0: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे
1: हैं? अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है।
0: 3 आ गई है?
1: हाँ, 3 आ गई।
0: चलो, गुड।
1: अभी नहीं है,
0: टाइम पास
1: हो गया उसको, टाइम हो गया अभी उसको।
0: अच्छा, टाइम भी हो गया?
1: हाँ, टाइम भी हो गया उसको।
0: गुड, टाइम पास।
1: उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझोना।
0: समझोना, ओके।
1: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया।
1: हाँ, टाइम हो गया है। तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा। तो मनावाटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस। और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
0: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के,
1: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी, आज मिलने के लिए।
0: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मनावाटू। फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते।
1: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।
0: ओके, बाय।